बेणी संगम आठसठ अंक समाई गे। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली

अंतर अग्न जले पड़कारे, मनमुख तक्के कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सो पाई है, सचे हाथ वडाई है, काम क्रोध अहंकार निवारे, तस्कर पंच शब्द संघारे, ज्ञान खड़गले मन सो लूज है,

किया जम्मण मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर दिख है दुख दर्द शरीर हो जाई है। निरकर बैस रहे पोखाया तापत राखे ठाक रखाया। कामल विगास हरे सर सुभर आत्मराम सखाई है। मरण लखाए मंडल में आए क्यों रहिए चलना परसाए। सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिले वडाई है। आप जो पाया जगत सुबाया जिन सिरिया तिन धंधे लाया। सच्चे ऊपर अवर न दिस साचे कीमत पाई है। ऐथे गोलड़ा दिन चारे खेल तमाशा धुंदू कारे। बारी खेल गए बारी गर ज्यों निसुपने पखलाई है। तिनको तख्त मिली वड्याई निरभो मन वसिया लिवलाई। खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरई तिर पवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा। साचे साचे तख्त वडाई होमे गणत गवाई है। गणत गणिये सह

जो जुग विरली गुरमुख जाता साचार अब रहे या मन राता इसकी ओढ़ गही सो पाया मन तन मैल न काई है जी बरसायण साचे राती हर प्रसंगी पौना प्राती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है रख रख पैर तरे पो तरना जात का देखो तेरी सरना दो सुख देह तुहे मन पावे कुछ की सो बने आई है।

को पाए, पूरा सतगुरु मिले मिलाए, गुरमुख होए सो हुकम पछाणे, मन हुकम समाए दा, हुकमे आया हुकम समाया, हुकमे दिसे जगते उपाया, हुकमे सुर्ग मश पए आला, हुकमे कला रहाए दा, हुकमे धरती तौल सिर भारंग, हुकमे पौन पानी गयना रंग, हुकमे सिर शक्ति कर वसा, हुकमे खेल खिलाए दा, हुकमे आडाने आगासी, हुकमे जल थल तिर पौन वासी, हुकमे सास ग्रास सदा फोन, हुकमे देख दिखाए दा, हुकमे पाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुकम सो दरगे पैजे, साथ मिलाए समाए दा, हुकमे जो शक्ति गुदारे, हुकमे सिर साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराए दा, काया कोट गड़े मैं राजा, नेव खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाई कर वासा, लभ पा पछताए दा, सत संतोख नगर मैं कारी, जत सत संजम सरन मोरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुरसबदी पद पाए दा, मारू महला पहला, सुनकला अपरम परतारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर वेखे, सुनो सुन उपाए दा, पौन पानी सुनने ते साजे, सृष्ट उपाय काया गढ़ राजे, अग्न पानी जीव जोत तुम्हारी, सुनने कला रहाए दा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए, सुनने वरते जुग सुबाए, इस पद विचारे सोजन पूरा, इस मिल गए परम चुकाए दा, सुनो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तेत ससर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बौड़ जोन ना पाए दा, सुनो चांद सूरज गयनारे, इसकी जो तेर पवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाए दा, सुनो तरत अकाश पाए, मेर थम्मा राखे सच कल पाए, ते पवन साज मेखली माया, आप उपाए खपाए दा, सुनो काणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, ओत पुचलत किया सिर करते, विस्माद शब्द देखाए दा, सुनो रात दिन सद किए, ओपत खपत सुखां दुख दीए, सुख दुखी ते अमर अतीता, गुरमुख ने कर पाए दा, सां वेद रुग जुज अथर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण, ताकि कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बुलाए दा, सुनो सब्द पताल उपाए, सुनो पवन रखे लिव लाए, आपे कारण किया अपरंपर, सब तेरो किया कमाए दा, राज ताम सड़कल तेरी छाया, जन्म मरण हो में दुख पाया, जिसनु कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथे मुक्त कराए दा, सुनो उपजे तस अवतारा, सृष्ट उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजे, तब लिखिया कर्म कमाए दा, गुरमुख समझे रोग न होई, ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगे जुगंतर मुक्त परायण, तो मुक्त पया पद पाए दा, पांच तत् सुनो परगस, देह संजोगी कर्म अभ्यास, बुरा भला दो मस्तक लिखे, पाप पुन बी जाए दा, उत्तम सदगुर पुरख निराले, सबदरते हर समत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाइये, पूरे भाग मिलाए दा, इस मन माया को निहो कनेरा, कोई बुझो ज्ञानी करो रंबेरा, आसा मनसा हो में सहसा, न लोभी कूड़ कमाए दा, सगुर ते पाए विचारा, तुन समाज सचे करबार, नानक निर्मल ना शब्द तोन, सच रामे नाम समाए दा, मारू महला पहला, जय देखा ते दीन दयाला, आए न जाई प्रभु कृपाला, जिया अंदर जुत समाई, रहो निराल मराया,
ਜਤ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪੈਣ ਨਾ ਪ੍ਰਾਉ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸ ਓਪਤ ਖਪਤ ਕੁਲ ਜਾਤੀ ਉਹ ਅਜਰਾ ਵਰਮਨ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਕਾਲਾ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਅਲੇਖ ਅਗਮ ਨਿਰਾਲਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਬਦਿਅਤ ਸੀਤਲ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ਤ੍ਰੈਵਰਤਾ ਚੌਥੇ ਕਰ ਵਸ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕੀਏ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਸਰਬ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਅਨਖਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਇਆ ਊਤ ਬਜਨ ਸੰਤ ਪਲੇ ਘਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰਸ ਮਾਤੇ ਪਾਰ

जाए। अन दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है। सदगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आ मिलया सबना का दाता। होमे मार तृष्णा अग्न निवारी, शब्द चीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बूझे, गुरमुख होवे ताया की सूझे।

तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्य पूजग दीसे, बल बल जाई प्रभ अपने ईसे, इस बिन दूजा अवर न दीसे, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मनराता, सेमर सेमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खजम हमारा, सिमर ना पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पै जरख

करो दया किरमायणा निर्गुण कौसंग लेर लाए कर कृपा मुहे टहले लाए पखा फेरो पीसो संत आगे चरण तुहे सुख पायना बहु द्वारे प्रम प्रम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संते संग रख हो त्यो नाम दान देवायना पै कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरे धरती अर आकाशा सिमरे चंद सूरज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमरे सिमरे सगल उपार जना सिमरे खंड दीप सब लोवा सिमरे पाताल पुरिया ससोवा सिमरे खाणी सिमरे बाणी सिमरे सगले हर जना सिमरे ब्रह्मे विष्णु महेसा सिमरे देवते कोड़ते तीसा सिमरे जख दैंत सब सिमरे अगणत न जाई जस गना सिमरे पस पंखी सा पूता सिमरे बाण पर्वत अवधूता लता बली साग सब सिमरे हरव रया स्वामी सा मना सिमरे थूल सूखम सब जनता सिमरे सिर साधक हर मंता गोवत प्रगट सिमरे प्रा मेरे सगल पवन का प्रवतना सिमरे नर नारी आसरमा सिमरे जद जोश सा वरना सिमरे गुणी चित्र सा बेते सिमरे रैणी अर देना सिमरे घड़ी मूर्त पल निमखा सिमरे काल अकाल सोच सोचा सिमरे सुन सा तिर संयोगा अलख न लगिए एक खिना करन करामन गार सुवामी सगल घटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लावो जन्म पदार्थ सोजना जाके मन रूठा प्रव्यापना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सुप्रा जाता बोढ़ न जोनी परम रोना गुर का शब्द से मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस आनंद वाणी सहे तुना सो तनवंता जिन प्रत्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन उठा सो पूर्व कर्मा नाशिरा जल थल मईल स्वामी सोई अवर न कही गए दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काट्यो प्रो सगला अवर न दिसे एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा तैन न जाई अंत न पारा गैर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या बिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर न कोई बिया आद मध अंत प्रा तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत किस निकट न आवे साध संग हर कीर्तन गावे सगल मनोरथता के पूर्ण जो श्रवणी प्रभ का जस सुना तू सबना का सब को तेरा सच्चे साहिब गैर गंभीरा कौ नानक से जन उत्तम जो पावे स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रसमरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरबाना हर दाता जी जंत पेखारी जान बांछे जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे हर औखद हर निर्मल रापे मंगना श्रावणी सुनो बिमल जा स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सुकृत ना ही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिटे कुमाते अवगुण मेरे सेमर सेमर स्वामी मन जीवे पांच दूत ताज तंगना चरण कमल जा बोहत चरिये संत संग मेरे सागर तरिये अर्चा बंधन हर संत निवासी बौड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर लेहो गोपाला कृपा निधान दीन दयाला सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न हो भी पंगना मान तन अर्प तरी अरागे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत्यागी हो मे हंतना जल त पूर्ण अंतर जामी खड़का रवे अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रवे असर मंगना जद कद पेखो प्रभ सुख सागर हर तोड़ भंडार ना ही रतनागर आगे अगा कश्मित नहीं पाइये तो बूझे जिस किर पंगना जाती शीतल मन त ठंडा जन्म मरण की मिटवी डंजा कर गे काल लिगे प्रवे अपने अम्यो तार धिर टंगना एको एक रवैया सब ठाई जिबन दूजा कोई नाही
ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਵਰਵਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਜੀ ਪਰਮੰਗਨਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਸਤਭਗ ਸੰਦ ਗੁਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਸੰਤ ਸੰਗਨਾ ਜੋ ਪੇਖਾ ਸੋ ਸਭ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਸੁਨਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਨੀ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮੇ ਕਰਾਇਓ ਸਰਣ ਸਹਾਈ ਸੰਤ ਹੈ ਤਨਾ ਜਾਤਕ ਜਾਚੇ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧੇ ਪਤ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਏਕੋ ਦਾਨ ਸਰਬ ਸੋ ਗੁਣ ਨਿੰਦ ਆਨ ਮੰਗਰਨ ਹੇ ਕਿੰਚਨਾ ਕਾਇਆ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਲੱਗੀ ਲਾਗ ਸੰਤ ਸੰਗਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਬਣੀ ਗਰਬਾਣੀ ਮਨ ਨਾਮ ਜੀਠੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਲ ਹੈ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ ਅੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ ਅੰਧ ਬਿਨੋਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਪੁੰਚਨਾ ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੀਤਾ ਕਰਨ ਕਰਾਮਨ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਅਸਾੜਾ ਤੁਮੇ ਪਠਾਏ ਤਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਜੋ ਤੂ ਪਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਉਹ

प्रतिपालया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल सरनाई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख निवारे जप हर हर पहो नहीं काल का समर्थ अकथ अगोचर देवा जी जनसवता की सेवा अंडज जेरज सेतुज उदभुज बहु प्रकारी पालका तिसे प्राप्त हुए निधाना राम नाम रस अंतर माना तर गए लीने अंध कूपते विरले के ही साल का आद अंत मत प्रसोई आपे करता करे सोई प्रांपो मिटया साध संगते दालदना कोई काल का उतम बाणी गाओ गोपाला साध संगत की मंगोर वाला बासन मेट निबासन होइए कल मर सगले जाल का संता की ए रीत नराली पार ब्रह्म कर देखे नाली सास सास आराधन हर हर क्यों सिमरत की जे आल का जय देखा ते अंतर जामी निमकना विसरो प्रभ मेरे स्वामी सेमर सेमर जीवे तेरे दासा बन जल पूर्ण थाल का तत्ती वावना ताको लाग गए सिमरत नाम अनदिन जाग गए अंध विनोद करे हर सिमरन जे माया संग न ताल का रोग सोग दूत से नाही साध संघर कीर्तन गाही।

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही। आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवां, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे निधारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही। आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी। ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती। जो जो जपे सो ही वड़ भागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निताता। अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया। तेस्यो प्रीत शाट अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़कड़ वसे सबन के नेरे। हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनामना। जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया। नानक दास सदा सरणाई, दूसर रवे ना लावना। आग्या दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने। ताकि कीमत कहण न जाई, जरकत ओई समावना। तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख बेधाता। बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदे कटे ना कटाए। सोई हुए जे करते पावे, कह के आव न्यामना। अंध कूबते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कृपा तारखे करे अपने, मेरे

चानन गुर मिले, दुख बिगजा लीना ए पौड़ी, माया वेख ना पुल, तू मनमुख मूर्खा, चलद्या नाल ना चलई, सब झूठ दर्ब लखा, अग्ञानी अंत ना बूझई, सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उभरे

जगत ना चुर हीड़े सच चौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शे होन हर नाम समाने आपे भगती लाए होन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोने सचे दर जाने आयथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणे तन तन से जन जिन हर सेवया तिन हो कुरबाने सलोक महला पहला मैल कुचजी मरवड़ी काली मनो कसुद्ध जे गुण होवन तां पिर रवे नानक अवगुण मुंद महला पहला साज सील सा संजमी सा पूरी परवार नानक ऐन सदा भली किरके गेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निदान पाया किरपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर चनी चाखिया अनस ठाक रखाया हर पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भुख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशगे तन राविगे तन उर नाम सीगा।

गए मार ना सके गवार। नानक जे यो मारिए गुरसबदी विचार, यो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए। नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए। पौड़ी दोवे तरफा उपाई होन विच सगत से वासा, सगती किने ना पायो फेर जन्म बेनासा। गुर सेवे है सांत पाई है जप सास गिरासा, सिमरत सास्त सोध देख।

जगमय राम नाम हर निर्मला होरमैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरे गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मने दुख जाए आपे दाता सुखे दा आपे देस जाए। नानक एवै जानिए सब केश तिसे रजाए पौड़ी हर ना बिना जगत है निर्थान बिन नावे तृप्त नाही दूजे परम भुलाया होमे दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाई है जे बहुत लोचाही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग में संती तन खटिया जिन्ना सदगुर मिलया प्रवे आए सदगुर सच दृढ़ाया।

वाचनी सुखी हूं सुखसार। सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार, हर साल आगे हर पड़े गुर के शब्द विचार। आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार, अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार। होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार, अंदर सुख ना होवई मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे गुर के हेत अपार। पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित पावे तित लाएदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा। गुरमुख सदा सलाई है सब हृदय जचा, जो नानक आप नचाएंदा तिव ही को नचा। सुध मारू वार महला पंजवां, दखणे महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू चौ सज्जन मैंडिया डेई सिस उतार, नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। महला पंजवां निहु महिंजा तऊ नाल, ब्याने कूड़ा वे देख कपड़ पौ डरावणे जिचर प्री ना देख। महला पंजवां उठी चालू कंतड़े हो पसी तो दीदार, काजल हार तंबोल रस बिन पसे हाबरा शार। पौड़ी तू सच्चा साहेब सच सच सब तारिया, गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया। हरि आग्या होए बेद पाप पुन विचारिया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण विस्तारिया। नौखण पृथ्वी साज हर रंग सवारिया, वेकी जंत्यो पाए अंतर कल तारिया। तेरा अंत न जाने कोय सच सिरजन हारिया, तू जाने सब आप गुरमुख निस्तारिया। दखणे महला पंजवां जे तू मित्र असाडड़ा, एक भोरी ना वे छोड़। जियो महिंजा तौ मोया कद पस्ती जानी तोह। महला पंजवां दुर्जन तू जल पाड़ी, विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी। मैंडा हब्बो दुर्

कहे कौन तो सृजा सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रावण अपड़ कोई ना सके तू अविनाशी जग ओ

त्रिण जिस होवे आप दयाल तिस लाभ है सदगुर चरण तू होर उपाय ना लभगी अवनासी सिष्ट करण दखणे मुहला पंजवां जे तू वत्ते अंगणे अब तरत सुहावी होए एक सकंते भारी मैंडी वात न पुछे कोए मुहला पंजवां अबे टोल सुहावणे सो बैठा अंगण मल पाई ना वञे बिरथड़ा जो कर आवे चल मुहला पंजवां सेज विशाई कंत कू किया हब सीगार इती मंझ ना सुमावई जेगल पैरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेसर जोन ना आवगी तू हुक्मी साजे सृष्ट साज सुमावगी तेरा रूप न जाई लखया क्यों तुझे ते आवगी तू सब मैं वरते आप कुदरत देखावगी तेरी पगत परे पंडार तोट न आवगी एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावगी जिस होवे आप दयाल तेस सदगुर सेवा लाभगी कदे न आवे तोट जो हर गुण गावगी दखणे मुहला पंजवा जाम पसी हठ मैं पिरी बिहिंजे नाल हब्बे दुख उलायम।

जान ही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हरंग मान ही महला पंजवा नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस सिंह क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवा रते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल नानक विण नावे आलू दया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जां तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुर भौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमत

कर हीड़े हिक आधार त्यो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सदगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदर है त्यो पापी मूल न तगे ऐ कर करे सो ऐ कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटई विण साधु सत्संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन पंग जिन जान गुरमुख सेवया इस कर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गोर सतगुर चरणी लगे डखणे महला पंजवां लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मजाऊ सोतणी चौदो मुख अलाए महला पंजवां माणकू मोय माओ डिणना तणी अपाह हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए।

पंडिया कवन को मत तुम लागे, बूढ़ो के परिवार सगल स्यों, राम ना जपो अपागे रहाओ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खाल चंदन जस पार, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, राग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सैन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जी उते सवे सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते बज जाके रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तल ताके, हर घ हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनागी। सहज समाद उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सुखमा देसो तू पल। हार जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निघाले सातन। तू सुनया तमरामा बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबरस चोले। अंक सुमाणिया हर अंक सुमाणी, जा प्रा पाणी सा सुहागण नारे। नव कर थाप महल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस बसर रंग रावे। नानक प्रयो प्रोचवे बबीह, कोकल शब्द सुहावे। तू सुन हरस पिन्ने प्रीतम अपने, मन तन रव तरवन्ने। कड़ी ना बिसरे क्यों कड़ी बिसारी हो बले।

चतर सुजान विधाता चंचल जगत सुबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाने प्रपाणे ता पाया गीत नाद कवत कवे सुन।

तीर्थ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गए अंक सुमानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्राभंके तुद पावा सरनावा गंग जमन तैबेणी संगम सात समुंद सुमाव उन दान पूजा परमेसर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझाव तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद अंतर प्री प्यार क्यों फिर बिन जीव गए राम जब लग दर्शन होए।

तुरखर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या तिन के पाप एक निम्क सब लाते जिन गुरबचनी घर जापया तन तन ते जन जिन हर नाम जपया

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल।

पाया। जैसे खूंद खुमारी काम क्रोध तृष्णा के लीने, गतनी एक जानी फूटी आँखें कछु ना सूझे।

को दर कार कभू न जानस, एको दर्श त्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया। नानक कहे विचारा भैरो महला पहला, सगली रैन सोबत गल फाही, दिन सजंजाल गवाया। खिन पाल घड़ी नहीं प्रो जानिया, जिन एहो जग त्यो पाया। मान रे क्यों छूटस दुख पारी, क्या ले आवस क्या ले जावस। राम जपो गुणकारी रगाओ, ऊन दो कावल मन मुख मत होची। मन अंधे सिर तंदा काल विकाल, सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, साबद सुरत नहीं पाई। सातर वेद त्रै गुण है माया, अंधलो तंद कुमाई।

का आकारा काटवद को करे बिचारा तहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गृह पंडित पेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया मदमाता रहे आसोए जागत रहे ना मूसे कोए रहाओ तो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे सो जागे जो एको जाने प्रकृत छोड़े तत पछाणे चौवरना विच जागे कोए जमे काले ते छूटे सोए।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक निचल साचा एक ना ओ मरे ना जाया।

जम काल सदा है सिरे ऊपर, दूजे पाए पद खोई, बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पढ़ पढ़ लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सदगुर सेवे परम गद पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिन्हा मन वसिया, दर साचे पद पाई, भैरो महला तीजा, मानमुख आसा नहीं उतरे, दूजे पाए खुआए, उधर न सान ना परिये कबहू, तिस न अगन पचाए, सदा आनंद राम रस राते, हिरदे नाम दुबदा मन पागी, हार गा अमृत पी तृप्ता ते रहाओ, आपे पार ब्रह्म सृट जिन साजी,

अरहो अराम रसायन नित उड़ पीवो हार घर रसना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार पैरों महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पा।

बिन सदगुर कैसे पार परया रहाओ, बिन जेवा कहां को भगता, बिन श्रवणा कहां को सुनता, बिन नेत्रा कहां को पेख, ना बिना नर कही ना लेख, बिन विद्या कहां कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसो ध्यान, बिन

लोई, भगत हमारी सब नी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूदरल की नी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एके रंग लीने, भैरो मोहल्ला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुर।

मन प्रगट पया नाम लए पावतन ते गया नाम लए सगल पुरबाया नाम लए अड़सठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेशा तत् ज्ञान रखाओ नाम लए दुख दूर पराना नाम लए आत मूढ़ सो ज्ञाना नाम लए प्रगट उजियारा।

का स्वाव नाम न विसरे संत प्रसाद, नाम लय अनहद पूरे नाद, प्रभु कृपा ते नाम नव निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई, तनवंते से ही प्रधान

नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वै नाओ, भैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन कराम नगार सु

मान मूड मुग्ध हुए चित्र सुग्यान सगल भयान का पौ नसे जन अपने कह हर मन बसे पार ब्रह्म प्रसूख निदान तत ज्ञान हर अमृत नाम हर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए भैरो मोहल्ला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्ध सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग हुए एक परीत संत मंडल तहा का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किशु ना कहे संत संग हुए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम खाणी संत मंडल का निचल आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग होमे दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुणतास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान भैरो मोहल्ला पंजवा रोग कमन जा राखे आप तेजन होए ना दुख संताप जिस ऊपर प्र कृपा करे जिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम ये चीत आवे ते सदा सुख होवे निकट न आवे ताके जाम रखाओ जब यो ना सो तब किने उपाया कमन मूल ते क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रद

नाटे सुख नाई बहुत देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो सा पागे वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता बंधन कर्म तरमो करता बंधन काटनहार मन वसै तौ सु पावे निज कर बसै सब जाजक प्रादे मनगार गुण निदान बेंत अपार जिसनु कर्म करे प्रव्यापना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कौ नांग तुमरी सरनाई ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई। भैरो महला पंजवा गुरमुख त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए हरहाओ। रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेड़त मन पया आनंद सरमन दान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जम त्रास साध संगत ऊंद कवन विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुलभ दे आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभु कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी। भैरो महला पनवा तब ते ऊंचा जा का नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जे सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख बसे मन आए सिमर मना तू सा

नाम जपत हर चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ हर हाओ हर सिमरत कि चाख ना जोह हर सिमरत दायत दो ना पोह हर सिमरत मोह मान ना बधे हर सिमरत गर्भ जोन ना रुद्ध हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बो माई अकेला जात अजात जपे जन कोए जो जापे तिसकी गद होए हर का नाम जपिगे।

का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ वीर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंत पनाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमरो दुख पंजना। अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे, तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्या

कबीर को जोर ना पहुँचे, कहाँ करो रग राया, काम किवारी दो सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा।

सुन सहज मैं रहो समाए, मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरै,

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरि परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर तान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी।

तैसे ओए नरा परमत नाम दियो नाके बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे दुई आनी दूध पियो गोबिंद राए दूध पियो मेरो मन पतियाए नहीं ता कर को बाप रसाए हराओ सोन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा

भगत जना को देवरा फिरे, भैरो नाम देव जियो, कर दूजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखा बंद जल सेती काज, जैसी मूड़।

पाल गंग जमन जो उल्टी बहे तो नामा अगर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरड़ चढ़े गोविंद आयला आपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल कहे

महामवार की चढ़िया सदा बसंत पर बड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद भोलिया होमे सुरत विसार होमे मार विचार मान गुण विच गुण लै सार अरहाव कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फूल फल ज्ञान पद प्राप्त शाप कणी चूका मन अभिमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख

संत प्यारी जे तू पढ़िया पंडित बीना दो अखर दो नावा परमत नानक एक लंघाए जे कर सच सुमावा बसंत हिंडोल मोहल्ला पहला राजा बालक नगरी काती दुष्टा नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पढ़िए पंडित करो बिचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन बिद पाओ प्राण पति रघाओ पीतर अगन बनस्पत मौली सागर पंडय पाया चंद सूरज दोए करही पीतर ऐसा ज्ञान न पाया राम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रेह कया सुने ना खाया मन है।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेव रंगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे, पौन पानी की

जे हर जीओ पावे सदा शुभ शरीर पाणे चित लावे अपना प्रसेवे सहज सुपाए नानक नाम से मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुर पाए सफलो बिरख हर के द्वार सची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया।

या की गत मित कही न जाए, काट काट रया समाय, या के भगत आनंदमय, या के भगत को ना ही खै, या के

कशु न होइगे पूर्ण अर्थ मांस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सोहेली जे लोड़ है तदा सुख पाई साधु संगत गुरे बताई उहां जपिए केवल नाम साधु संगत पार ग्राम सगल तत् में तत् ज्ञान सर्व ध्यान में एक ध्यान हर कीर्तन में उत्तम तुना नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल गए सोए जिस

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रव दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहो दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जने किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

दुष्ट दूत सा प्रम सके बिन गुर साचे नहीं जाए। तुग देद संतर रहे ताए किरत ओ ना का मिटसनाहे। कोई अपना बीजिया आप खाहे जन कार खवाला आप सोए। जन को पहुंच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप। अखंड पूर्ण या को प्रताप गुण गोविंद ने दर्शन गाए। नानक जीवे हर चरण ते आए बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया। पार ब्रह्म प्रव करी माया सर मनोरथ पूर्ण काम। जब जीवे नानक राम नाम सारुत सुहावी जिद हर चित आवे। बिन सदगुर दिसे बिन लांती सागत फिर आवे जावे रगाओ। से तनवंत जिन हर प्रवरास काम क्रोध गुर शब्द नास। पै बिन से निरपय पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो लिवास हर जप जप होई पूर्ण आस। जल

प्रकाट मैल निर्मल करे, गुरपूरे की सरणी परे आप करे आप करने हारे, तर कृपा नानक उधारे बसंत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख फूल फूल फूले, अहंग त्याग त्यागे किरण कमल पागे, तो मिलो प्रस भागे हर चेत मन मेरे, अरहाओ सगन बाज कूले, एक रह सूक कठूले बसंत रुत आई, प्रफूलता रहे अब करू आयो रे, एक नाम बोवहो बोवहो अनरूत नाही नाही

तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग धरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी। पिता पार ब्रह्म प्रवतनी मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ। ओपत परलो प्रवते होवे

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझस साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ। मन पूलो परमस पावरतार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, गड़बंधन बाध्यो शीस मार, मन मुग्धो दादर भगतहीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात ना पाती नाम लीन, सब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत ना साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल होमे कड्डे तोए, सदा मुक्त बंद ना सके कोए, सदा नाम खाने और ना कोए, मन हर के पाने आवे जाए, सब में एको केश पहन न जाए, सबको वर्ते हुक्म सुमाए, दूसू सब तिसर जाए, तू अपुल ना पुलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे,

तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास त्याय प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा, अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पजो।

दू सुग बांधो संसार मन उदरण का साज नाहे पाबंद नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके कीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिण मैं गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने।

देव जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, ए देही के अधिक काम। कह कबीर पज राम नाम, जो ए खसम है जाया, पूत बाब खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया। देखो लोगा कल को पाओ, सुत मुकलाई अपनी माओ, रहाओ पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नरपय सोवे, बिन बासन खीर बिलोवे, बिन अस्थन गऊ लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई। कहो कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बोलिए बाल, मोको का पढ़ावस आल जाल। मेरी पटिया लिख दियो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माघ जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहोगे।

तित ग्रे वाजे पंच शब्द वड़पाग मथोरा तेन जन के सब पाप गए सब दोख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तेन जन के हर मार कढे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सहसृढ़ का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, जो चातक जल पिए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्व प्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते एक।

फुन गर्भ परन भगतन की टहल कुमावत गावत दो काटे ताके जन्म मरन जा को पयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर से अगाने तेज सुमाने मुक्ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जाप उदरन सारग महला पंजवा गायो री मैं गुणद मंगल गायो पले संजोग पले दिन अवसर जौ गोपाल री जायो अरहाओ संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधे मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भगते दर्श देख।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी बेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई, प्रवरंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता नेमक नेमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुर्भाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही, तर मराए जा पकस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का

तो मोए अपनी प्रा मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई। जे प्रसाद मिल गए प्रभ नानक बल बलता के हो जाई, सारग महला पंजवा वह अवसर के हो बल जाई। आड़ पर अपना प्रा सिमरन वडभागी हर पाई रखाओ, भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जननाई। ऊच ते ऊच नाम दुश्म दरसी रविदास ठाकुर बने आई, जियो पिंड तान तान साधन का यो मन संतरे नाई। संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई, सारग महला पंजवा मनोरथ पूरे सब।

पहले इतनी सुख पाया जिस गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे।

सुखसार समागम कोड बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवारे महापत्ते पातक उतरे हर नामा उतारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदरिया मान करो अब महाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहा देह नाओ बलिहारी रखाओ चौ दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आ दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किस मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा अब मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगानी राते सारग महला पंजवा अब मोहे लब देव है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रखाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेम मांगे आयो सब थान देश प्रे रोम न समसर लाग रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दृष्ट न करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम कुटेर ज्यो आल कमला लोभांग गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबांग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लागे सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना।

खुल्यो कर्म पयो पर गासा काट काट हर हर डीठा रखाओ पार ब्रह्म आजोनी संपो सर्व थान कड़ बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्राप चरणीठा सत संगत की रेन मुख लागी कीजे सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग न लय मजीठा सारग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुरसाथे निमक बचन प्रेही रे बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रगाओ किरपा निदान गुण नायक ठाकुर सब समूह सब नाथे।

कहो नानक मैं अतुल सुख पाया, जन्म मरण पय लाते, सारग महला पंजवां अरे मूड़े आन कहे कत जाई, संग मनोहर अमृत है रे बोल बोल बिखाई रघाओ, प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते, ते सिंहर च नहीं राई, मोन सिंह बाबर मन मोयो, झूठ ठगौरी पाई, पयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन सिंह बने आई, सगल निदान करे मैं पाए, कहो नानक जोत समाई, सारग महला पंजवां ओ अंग प्रेपीत चीत पै लरिया, जो तो बचन दियो मेरे सदगुर, तो मैं साज सी गरिया।

तन सो पाग, तन सुहागा, तन दिर जिन माना, यो मन तुमरा, सब ग्रह तन तुमरा, हियो कियो कुर्बाना, कोट लाख राज सुख पाए, एक निमक पेख दृष्टाना, जो कहो मुखो सेव के बैसिए, तुग नारग अंत न जाना, सारग महला पंजवा, आप मोरो सहसा दुख गया, और उपाव सगल त्याग छोड़े, सदगुर शरण पया, अरहाव सर्व सिद्ध कार्य सब सबरे, अंग रोग सगल की खया, और पराध खिन मैं खौ पई गए, गुर मिल हर हर कहया, पांच दास गुर वसगत कीने।

मेरो मन जद का तुझे सुमारे हम बारक दीन पिता प्रा मेरे जो जाने त्यो पारे रगाओ जब भूखो ता भोजन मांगे हकाए सुख किनारे तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक दुखोए रवारे कवन बसेरो दा दासन को।

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कौ नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रगाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को

पूर्ण जाके सुख है हरी रघाव मंगल रूप प्राण जीवन तान सिमरत अंध कना वड समरथ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्र

पंजवा हर घर दियो सेवक को नाम, मानस का को बपरो पाई, जा को रखा राम रहाओ। आप महाजन आपे पंचा, आप सेवक कै काम, आपे सगले दूत बिदारे, ठाकुर अंतर जाम। आपे पदरा की सेवक की, आप कियो बंधान, आजुगा सेवक की रख, नानक को प्रभ जान। सारग मोहल्ला पंजवा, तू मेरे मीत सगा।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया, सारग महला पंजवां, हर के नाम की गद ठांडी, वेद पुराण सिमर साधु जन, खोजत खोजत कांडी रहाओ, शिव ब्रांच अर इंद्र लोक, तामे जल तो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पैसी तल, दुख दर्द प्रमगिरिया, जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभु जियो, मिले संत जन सेवा, सारग महला पंजवां, जे वे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की, उचरो प्रभु को नाओ रगाओ, राम नाम रतन तन संचो, मन तन लाभो पावो, आन विभूत मिथ्या कर मानो, साचा ए सुवाओ, जी प्राण मुक्त को दाता, एक सस्यों लिव लाओ, कहो नानक ताकी सरनाई, देत सगल अपियाओ, सारग महला पंजवां, होती नहीं कमन कछ करनी, ए ओढ़ पाई मिल संत, गोपाल एक की सरणी रगाओ, पांच दोख शिद्र या तरम है, बिखे ब्याध की करनी, आस अपार दिनस गण राखे, ग्रस्त जात बल जरणी, अनाथे नाथ दयाल सुख सागर, सर्व दुख पय हरणी, मन बांचित चितवत नानक दास।

कैत सुनत केश सांत न उपजत बिन बसास क्या सिखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ताके मुख लागे का लेखा जाके रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत पेखा नानक दर्श मगन मन मोयो पूर्ण अर्थ बसेखा सारग महला पनवा सिमरन राम को एक नाम काल मल दग्ध होए किन अंतर कोड़ दान स्नान रखाओ आन जिंजार बिरथाश्रम कालत बिन घर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश पैन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नान प्रभ जीवे बिन सजाए अभमान सारग महला पंजवा तूरत सोई ये तुर को लागे सोई तुर अंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रगाओ बलवंत करे ना।

प्रव सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने को।

पदत प्राणी नरक कोर गुबार अनक जोनी प्रमत हार्यो प्रमत बारंग बार पत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सारग मोहल्ला पंजवा विराजत आराम को प्रताप आद व्याद उपास सब नासी बिनसे तीने ताप रगाओ तृष्णा बुझी पूर्ण सब आशा चूके सोग संताप गुण गावत अचुत अबनासी मान तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मस्तर साधु के संखाप भगत वचल पै कट नगारे नानक के माई बाप सारग मोहल्ला पंजवा आतुर ना बिन संसार तृप्त न होवत उकरी आसा इत लागो बिखिया शार रगाओ पाए ठगौरी आप पुलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमखना सिमरियो जम कंकर करत खुआर ओ कृपाल दीन दुख भंजन तेरिया संता की रावार नानक दास दर्श प्रव जाते मंत्र को आधार सारग मोहल्ला पंजवा मैला हर के ना बिन जियो तिन प्रसाते आप पुराया विखे ठगौरी पियो रगाओ कोड़ जन्म प्रमतो बो भांति हित नहीं कतहु पाई पूरा सदगुर सहजना पेटिया ताकत आवे जाई राख लियो प्रसमृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दा तेरी शरणाई भवजल उतरे उपार सारग मोहल्ला पंजवा रावण कौ राम के गुण बाद साध संग त्यागे परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रगाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिरसे माया माद सहज आनंद अनघ तुन बाणी बौर न पय बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमयो मनोर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारग मोहल्ला पंजवा कीने पाप के बहुकोट दिनस रहनी थकत नाही कते नाही छोट रगाओ महा बजर बिख व्याधि सिर

शरीर सब हुट्यो, सास गयो तद घाट रहाओ, अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट। तिल भग करत करत पछतावे, कभू न साके शांत, निंदक जमदूती आए संघारियो, देवे मूंड ऊपर मटाक। नानक आपन कटारी आपस को लाई, मन अपना कीनू फाट। सारग मोहल्ला पंजवा टूटी, निंदक की अद बीच। जनका राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच। रहाओ उसका कहया कोई न सुनई,

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रखाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम। जा किरदे वसे पए भंजन ते जाने सगल जगान, खेन पल बिसर नहीं मेरे करते तो नानक मांगे दान। सार्ग मोहल्ला पंजवां बूठा सर्वथाई मेहो, अनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो ने हो रहाओ। चार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना के हो, कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी

मोह मद मातो सिमरत नाहे हरे रगाओ, साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे, सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले, चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी कर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम नानक निस्तरीय।

परा पूर्व जिसे लिखया बिरला पाए कोए रावण गो गोपाल करते नानका सजोए सारग मोहल्ला पंजवा हर के नाम की मत सार हर विसार जो आन राचे मितन सब स्थार रगाओ साध संगम बज स्वामी पाप हो बतखार किरनार बिन बसाए हिरदे बौर जन्म ना मार।

मोहे मोहे ली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर ते आए अब रहे जमे मेल सारग मोहल्ला पंजवा कंचना बो दत करा होम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम थुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

कोड़ कल्प के दुख बिनासन, साध दृढ़ाए नंबेरा रखाओ, क्रोध निवार जले हो ममता, प्रेम सदा नवरंगी, अनपो बिसर गए प्रो जात्या, हर निर्मायल संगी, चंचल मत त्याग पव पंजन पाया, एक शब्द लिवलागी, हर अचाख त्रिखा निवारी, हर मेल लहे बड़पागी, अपारत सिंच परे सुबर सार, गुरमत साच निहला, मरत नाम रते ने केवल, आजुगा दयाला, मोहन मोह लिया मनमोरा, बड़े पाग लिवलागी, साज विचार केलब दो काटे, मन निर्मल अनरागी, गहर गंभीर सागर रतनागर, अवर नहीं अन पूजा, शब्द विचार परम पौ पंजन, अवर न जान्या दूजा, मनुआ मार निर्मल पचीनिया, हर सरते अदकाई, एक से बन में अवर न जाना, सदगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एक को जान्या, तुबर परे नाही चिर डोले, मन ही ते मन मान्या, गुर प्रसादी अकथो कथिये, कहो कहा वे सोई, नानक दीन दयाल हमारे, अवर न जान्या कोई, सार्ग महला तीजा, अष्टपदियां कर पहला, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, मन मेरे हर के नाम वडाई, हर बिन अवर न जाना कोई, हर के नाम मुक्त गद पाई रगाओ, शब्द पौ पंजन जमकाल निखंजन, हर से ती लिवलाई, हर सुखदाता गुरमुख जाता, सहजे रहा सुमाई, भगतां का भोजन, हर नाम निरंजन, पहनन भगत बढ़ाई, निज करवासा सदा हर सेवन, हर दर शोभा पाई, मानमुख बुद्ध काची मनुआ डोले, अकथ न कथे कहानी, गुरमत नित्य घर मन वसया, अमृत साची बानी, मन के तरंग शब्द निवारे, रसना सहज सुपाई, सदगुर में रही गे सदे अपने, जिन हर से ती लिव लाई, मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे, हर चरणी चित लाई, हर सर सागर सदा जन निर्मल, नावे सहज सुपाई, शब्द विचार सदा रंग राते, होमे तृष्णा मारी, अंतर ने केवल रव्या, हवे आत्म राम मुरारी, सेव सेव रहे सच राते, जो तेरे मन पाणे, दुबदा मैल न पावे जग चूठी, गुण अवगुण ना पछाणे, आपे मेल लहे अकथ कथिये, सच शब्द सच बाणी, नानक साचे सच सुमाणे।

जिन जिन करी अवग्या जन की ते तैं दिए रुड़ाई मुक्त पए साह संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पए किरपाला तिन पवसागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम अधारा सारग महला पंजवां अष्टपदी कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम अगाद सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहु मै नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

पे आया सारंग की वार महल्ला चौथा हराए महमे हसने की तोन एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्लोक महल्ला दूजा।

पौड़ी गुरमुख चल तरचाए होन गुण प्रगटी आया गुरबाणी सद उचर है हर मन मसाया सगत गई प्रम कटिया शिव जोत जगाया।

आधार नानक आप सदीव है, पूरा जिस भंडार वड्डा कर सालाही है, अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है, सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पात स्यों कर जाई, गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई, मत पंखे रूवस होए।

दुख च जम्मण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पड़ पड़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए मोहल्ला पहला नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देह जा जियो विच्चों कड़िये पसु परे आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे श्लोक महला पहला कर नारायण सभा नाल

का करता करे सो होए मोहल्ला पहला रन्ना होइया बोधियां पुरख होए सयाद सील संजम सज पन्नी खाना खाज आहाज शर्म गया करे अपने पात उड़च ली नाल नानक सच्चा एक है और न सच्चा पाल पौड़ी बार पसम लेपन करे अंतर गुबारी खिंता चोली बो पेख करे दुर्मत अंकारी साहेब शब्द ना उचरे माया मोह पसारी अंतर लालच परम है परमे गावारी नानक नाम न चेतई जुए बाजी हारी श्लोक महला पहला लक्ष्यो प्रीत होए लख जीवन क्या खुशियां क्या चाओ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक कड़ी मैं जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चेतन आवे कौड़ा तन ताए जाए मिठा कौड़ा दोवे रोग नानक अंत विगुते भोग चग चग चखना।

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसमी दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वासी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने, ऐसा वर्तर ही जे पांडे, और बहुत सिख क्या दी जे पौड़ी, खूब तरा जे रंग राय, संचय बिख माया, कर कर हेत बधाएं दे, पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्तर ना विस है, बहु प्रीत लगाया, वेख दिया गई माया तोहे गई, पछते पछताया।

फिर हुए ना बिनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कभी ना उतरे गुरमुख पर गासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अंकार, शब्दे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुवार, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुरु का पाणा मन ले शब्द रखे उरतार। महला तीजा, सो जाप

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसै दर गए मोह द्वार। नानक आपे मेल लय आपे बख्शन हार, महला चौथा नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तेज ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद। महला चौथा सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मीहो मुठा शैबर लाए, सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए, हर किसे ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए, हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम आराधे।

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते त्रंग त्रंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रिमोच।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहे।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेगा, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नावे रुत केही। मलार महला पहला।

सके घड़कड़ रहे आ समाई एक बिन मैं अवर न जाना सतगुर दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर के शब्द हर तिहाई रहाओ मन तन तीजे एक लिव लागे सहजे रहे समाई गुर प्रसादी प्रम पौ पागे एक नाम निवलाई गुर बचनी सचकार कमावे गत मत तब ही पाई कोड़ मध्य किसे भुजाए तिन राम नाम लिवलाई जय जय देखा तै एको सोई ए गुरमत बुद पाई मन तन प्राण तरी आगे

गुरमुख राम नाम मन पीजे हर सेती लिवलाई रहाओ। मेरा प्रभ आत अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई, सच संयम करनी घर कीर्त हर सेती लिवलाई। आपे शब्द साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मिलाई, देही काची पौन मजाए गुरमुख अमृत पाई। आपे साजे सबका रे लाए सो सच रहा समाई, नानक ना बिना कोई किश नाही नामे दे वडाई। मलार मोहला तीजा हमे बिख मन मोया लद्या अजगर पारी, गारड़ शब्द मुख पाया हमे बिख घर मारी। मन रे हमे मोह दुख पारी क्यों।

परे सदा अलागर हे निर्वाण सो पंडित दर्ग है परवान सबना में एको एक वखाण है जा एको वेखे ता एको जाने जा को बगसे मिले सोए ऐथे उथे सदा सुख होए कहत नानक कवन विद करे क्या कोए सोई मुक्त जाको कृपा होए आनदन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार मोहल्ला तीजा प्राम प्रा जोन मन मुख परमाई जम काल मारे निदपात गवाई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रा मिलया मैल कर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाए रखाओ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उतार भवजर शब्द लंघावन हार दर साचे दिसे सत्यार बहु कर्म करे सदगुर नहीं पाया बिन गुर परम पूले बहु माया होमे ममता बहु मोह बधाया दूजे पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाह गुर शब्दी जप

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लबटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

नींद न पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सुपाए, नामहीन बिनसे दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुबद थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। बिख्या मायर बिख्या वापार, मार जन्मे फिर होए खुवार। गुरमुख तुरिया गुण उर तार, गुर माने माने सब कोए। गुर बचनी मन शीतल होए, चौ जुग सोभा निर्मल जन सोए। नानक गुरमुख विरला कोए, राग मलार महला चौथा। कार पहला चौपदे एक ओ अंकार।

सगुर देख मेरा मन बिगस्यो जन घर पेट्यो बनवारी जगाओ जिन ऐसा नाम सारिया मेरा हर घर तिसके कुल लागी गारी हर तिसके कुल प्रसूत न करियो तिस विधवा कर्म है तारी हर घर आन मिलावो गुर साधु जिस अहिंस हर उर तारी गुर डीठे गुर का सिख बिगसै

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए। करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पू घर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहस्ते, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। मलार मोहल्ला पंजवा, खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे, ताको तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रवदाता, फूले बारक अनक लख बरिया। अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की। सर्प अगन कर मिले, माता पिता कंठ लाए राखे। आनंद सहज तब खिले, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी। तिस बारक पूख कैसी, नवनिध नाम निदान ग्रे तेरे। मन बांछे सो लैसी, पिता कृपाल आग्या ए दीनी। बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै। मोहे हृदय बसे निध चरना, मलार मोहल्ला पंजवा। सगल विधि जोर आहार करे, तजो सगल अंदेसा। कार्ज सगल आरंभ्यो करका, ठाकुर का पहारूसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी, और पया मैं प्रेम पेखे। ग्रे मंगल सोलावी, अरहाओ मनुआ लाए सवारे थाना। पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। भगत करो निव पाए, जापरे आए।

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पय सागर, हर नानक चरण तिहाई। मलार महला पंजवां, कानघर बरस सगल जग छाया। पये किरपाल प्रीतम प्रा मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी, पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरण निवारे, बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवां, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चिते उलास आस।

आतन साधु संग उधारे रखाओ। देव कोल दैंत कोल जाख किन्नर नार सागर उतरे पारे। जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध मां बिखिया रस इनते पए निरारे। दीन दयाल जपे करना मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर घाट। नाम रास संजी कर जम स्यो जाओ ना जम कै घाट। रखाओ तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे प्रम के खुले कपाट। बेसुमार साहु प्रापाया ला चरण निध खाट। शरण गई अचुत अवनासी किरवे काढ़े है शाट। काल कलेश मिटे दास नाम।

चित आवे, आड़ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गामन सुनन सब तेरा पाना, हुकम बूझे सो साच समाना, जप जप जीवे तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दोसो करते हुकम मर जाए, पाने बक्स पाने दे सजाए।

गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ। तोनत ललत गुनाग अनक पांत बोविध रूप दिखावनी नीकी। गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी। साध संग राम।

आकाशी बिरसे सहज सुपाई। प्रीतमा प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। यात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिरब करे बिललाई। कानहार कोर दसो दस बरस बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजे जल गीते सुख दुख पुरब कमाई। खेन तेल रह न सकै पल जर बिन मरण जीवन तिस ताई।

प्यारे बिन इरखे न रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई, पेर नजीक ना बूझे बपड़ी, सतगुर दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां कार दूजा, एक ओंकार।

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझे कोए, वाह वाह कर प्रसा लाई है तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदा का अभ्यास, हर नाम चित ना आवई न निज कर होवे वास, जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए, मलार महला तीजा अष्टपदी कार दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम साए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है।

पूजा लाया, दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया, ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया, श्लोक महला दूजा सावन आया हे सखी।

गुर के शब्द विचारी है, गुण में रहे समाए, अपना आप तोलसी, आपे मिले मिलाए, तिसकी कीमत ना पवे, कहना किशु ना जाए, हों बलिहारी गुरे अपने, जे सच्ची बूझ दित्ती बुझाए, जगत मुस्ते अमृत लुटिए, मनमुख बूझ ना पाए, विणनावे नाल ना चरसी, जासी जन्म गवाए, गुरमती जागे तिनी कर राखिया, दूतां का किश ना वसाए, सलोक महला तीजा, बा बीहा ना बिललाए ना तरसाए, यो मन खसम का हुक्म मन, ना हुक्म मन्या तिख उत्तर है, चढ़े चवगल।

0: गाओ।
1: गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ। नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सदगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन मसाया।

उपजे पाइये मोह द्वार, पाए ते सहज पाइये मेरे ज्योति जोत अपार, पाए ते पाए जल लंगीए गुरमति विचार, पाए ते निरपो पाइये जिदा अंत न पारावार, मनमुख पै की सार ना जाननी तृष्णा जलते करे पुकार, नानक नावे ही ते सुख पाया गुरमति उरतार, श्लोक महला पहला रूपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंड, लबे माले कोल मिल मचल ऊंगे साउण पलंग, पौके कोप खुआर हुए

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे आवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तो आना तू कुदरती आया, सगनानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छा।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारं हृदय राम गोविंद गुण सारं हरहाओ सुरसरी सरल किरत बार नीरे संत जन करत नहीं पानं तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनं तर तार अपवित्र कर मानिए रे

बल जाओ। कल युग मैं पाया जिन नाओ, कानड़ा मोहल्ला पंजवा, कीर्त प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंदन संतन, ऊहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ, अनक पान कर द्वार न पावो, होए किरपाल ता हर हर त्यावो, कोड़ कर्म कर दे ना सोदा, साध संगत मैं मन पर बोदा, तृष्ण ना बूझी बहु रंग माया, नाम लैत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जप पए दयाल, कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवा, ऐसी मांग गोबिंद ते, तैर संतन की संग साधु का, हर नामा जा परम गते रहाओ, पूजा चरना ठाकुर सरना, तोई कुछ जो प्रभ जी उपरना, सबर होते दुर्लभ देही, जा को सदगुर मया करेही, अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जा के हृदय बसे गुर पैरा।

अनक पांद की एक जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, तानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है, हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाल अमोला,

ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो ज्यों ज्यों जपे तवे सुख पावे।

औरंगी सब एकत बचन चलावै गो गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो जी जंत सब सहट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो बिन गुर भेटे को मैल न पावै आए जाए दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया।

मुख उजला प्रधान नानक गुर गोविंद हर जित मिलहर पाया नाम पौड़ी। तू आपे ही सिद्ध साधको तू आपे ही जुग जोगिया तू आपे ही रस रसियड़ा तू आपे ही भोग भोगिया तू आपे आप वर्तदा तू आपे करे सोहोगिया। सत संगत सदगुर तन तनो तन तन तनो जित मिलहर बुलग।

विचार हर मिल हो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर मनिया जन नानक तिन जयकार पौड़ी आराम नाम वखर है उत्तम हर नायक पुरख हमारा हर खेल किया हर आपे वरतै सब जगत किया वणजारा सब जोत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्याव है तो सब

था। हमरी जेबा एक प्राभ हर के गुण अगम अथाहा, हम क्यों कर जपे ए आणिया हर तुमड अगम अगाहा। हर दियो प्रभु मत उत्मा गुर सदगुर कै पग पाहा, सत संगत हर

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आ बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला श्लोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस स्थिति पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुरु मन्या जन नानक बड़ भाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केतविद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा श्लोक महला चौथा हर घर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर घर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पय नाइयन जिन हर मन मस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर घर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना

कर रोल, वडभागी संगत मिले गुर सतगुर पूरा बोल। सब त्यावो नर नारायण नारायण, जित चूका जम झगड़ चघोल। सरोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया सर संध्या गावार। नानक हर जन हर ले उबरे जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन, जे कर दूजा देख दे जन नानक कढ़ चन। पौड़ी जल थल महियल पूरनो अपरंपर सोई, जी जंद प्रतपाल दा जो करे सोई। मात पिता सुत प्रात मीत तिस बिन नहीं कोई, घट घट अंतर रव रहया जप्यो जन कोई। सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। सलोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना हर प्रापाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू लुड़ लुड़ दर गए।

बाद रामा राम राम में अंत न पाया। हम बारक प्रद पारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया। अरहाव हर के नाम असंग अगम है अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत भोकिनी एक तिल ने कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गावे गुण गोविंद अंत न पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बो जपगे था न पाया। उस्तद करे तुमरी जनमाद हो गुण गावे हर राया। तुम जल निध हां मीने तुमरे तेरा अंत न कतहु पाया। जन कौ कृपा करो मसूदन हर देवो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसया। हर घर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ। गुर के पाग सिमरो दिन राती मन हर घर हर बसया। हर घर हर कीर्त जग सारी घस चंदन जस कसया। हर जन हर घर हर लिवलाई सब सागत खोज पया। ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक पग नागन छोए जलया। जन के तुम घर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखया। कहां पया दायत करीब खीली सब कर कर चर परया। जेते जी जन प्रव किए सब कालय मोह ग्रसया। हर जन हर हर हर प्रव राखे जन नानक सरन।

श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ, इत उत दह दिस रव्यो मेर तिने समान, जद कता तद पेखीए हर पुरख पत प्रधान, साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हारंग की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम मन को थम।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरी जय। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे डंड तरमरा एका दीजे। सब तीर्थ वर्त जग पुन की

रामा राम राम पूज करीजे, मन तन अर्प तरो सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दरड़ीजे रखाव, ब्रह्म नाम गुण साग तरोव, नेत चुन चुन पूज करीजे, आत्म दियो दियो है आत्म, रस लागे पूज करीजे, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, विचर विचर रस पीजे, गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सदगुर को यो मन दीजे, निर्मोल अत हीरो नीको, हीरे हीर विधीजे, मन मोती साल है गुर सब दी।

करीजे। जब लग सास होए मन अंतर, साधु तूर पवीजे रगाव। शंकर नारद शेख नागमोन, तूर साधु की लोचीजे। पावन पावन पवित होए सब, जे साधु चरण तरीजे। तज लाज अंकार सब तजिए, मिल साधु संग रहीजे। तरमराय की कान चुकावे, बिग डुबदा काड कढ़ीजे। परम सूके बो उब सुग कहिए, मिल साधु संग हरीजे। ताते बेलम पल टिल ना कीजे, जाए साधु चरण लगीजे। राम नाम कीर्तन रतन वत, हर साधु पास रखीजे। जो बचन गुर सत सत करमाने, आगे काड तरीजे। संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काढ़ी बां को पीजे। जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पवीजे। जे बड़पा होए अतनीका, ता गुरमत नाम जरड़ीजे। सब माया मोह बिखम जगत तरीये, सहजे हरस पीजे। माया माया के जो अधकाई, विच माया पजे पचीजे। अज्ञान अंधेर महा पंथ बिगड़ा, अहंकार पार लद लीजे। नानक राम अराम राम राम।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद राग प्रभाती विपास महला पहला चौप दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पद पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मने सब कोए विण नावे पद कभो न होए अवर सियाण सगली पाज जय बगसे तै पूरा काज रखाओ नाओ तेरा तान नाओ दीबान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत प्रवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मने आए बिर नावे बादी जम पुर जाए नारी बेरी घर दर देश मन किया खुशिया की चैवेस या सदे ता ठिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो होए जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल लीजे खोए यो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवरनास्त करणहार अपार रघाओ पाताल पुरिया एक पार हो वह लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे हो वह होर दुखा ते सुख उपज सुखी हो वह दुख जित मुख तू सालाही है तित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू अवर पला सहसार जित नाम न उपज से तन होए खुवार प्रभाती महला पहला जय कारण वे ब्रह्मे उचरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध पय उदासी देवी।

ते तस्कर जो नाम ना लेवै वासे कोड़ पंचासा। जे को एक करे चंगयाई मन चित बहुत बभावे, एते गुण एतिया चंगयाइया दे ना पछोतावै। तो साला हन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई, जे को जियो कहे ओ ना कहो जम की तलबना होई। प्रभाती महला पहला जाके रूप नाही जात नाही, नाही मुख मासा सतगुरु मिले नरन।

बनाए बहु रंगी सिद्ध उपाए प्रखेल किया कर कर वेखै करे कराए सर्ब जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम घाट घाट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरणाई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़ पू

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर सबदी, हम नाम मिटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत मैं हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वडे भाग सत संगत पाई, गुर सदगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, तब रैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लो

क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के भंडार, गुण गावे प्रभु दर्श प्यार, तुमरी भगत प्रभु तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छड़ाई रहाओ, जो जन राता प्रभु के रंग, तिन सुख पाया प्रभु के संग, जिन रस आया सोई जाने, पेख पेख मन में हैरान, सो सुखिया

भगत हर सो मन माना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रगुणित गाई है, कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा, चेतवंत से सच साहा। हर की दरगहे नाम साहा, हर हर नाम जपो मन मीत। गुरपूरा पाई गे वडभागी, निर्मल पूर्ण रीत। रखाओ पाया लाभ वजी वाधाई, संत प्रसाद हर के गुण गाई। सफल जन्म जीवन प्रवान, गुर प्रसादी हर अंगमान। बिनसे काम क्रोध अहंकार, नानक गुरमुख उतर है पार। प्रभाती महला पंजवा, गुर पूरा पूरी ताकी कला। गुर का शब्द सदा सद अटला, गुर की बाणी जिस मन वसै। दुख दर्द सब ताक

तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया प्रभाती महला तीजा विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर प्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरे नाल हर मंदिर सबदे खोजिए हर नामो लियो समाल मन मेरे शब्द रपे रंग होए सची भगत सच्चा हर मंदिर प्रगटी साची सोए रहाओ हर मंदिर इहो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए मन मुख मूल ना जाननी मानस हर मंदिर ना होए हर मंदिर हर जीव साजिया रखिया हुक्म सवार तुर लेख लिखिया सो कमावना ओए ना मेटन हार शब्द चीन सुख पाया सच्चे नाए प्यार हर मंदिर सबदे सोना कंचन कोट अपार हर मंदिर इहो जगत है गुर बिन घोरंग धार दूजा पाओ कर पूज दे मनमुख अंध गवार जिथे लेखा मंगिए जिथे दे जात ना जाए साजर ते से उबरे दुहे दूजे पाए हर मंदिर में ना मनधान है ना बूझे मुगद गवार गुर प्रसादी चीनिया हर राख्या उरतार गुर की बाणी गुर ते जाति जे शब्द ते रंग लाए पवित पावन से जन निर्मल हर कै नाम समाए हर मंदिर हर का हाट है रख्या शब्द सवार तिस सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार हर मंदिर में मन लोट है मोया दूजे पाए पारस पेटे कंचन पया कीमत कही न जाए हर मंदिर में

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर कड है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाई है मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

कर स्नान कर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए एत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ पाप करे पंचा के बस रे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कुमावे हुए निशंक जमपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध

साई मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रखाओ माने हाट माने पाठ माने है पासारी माने बासे नाना पेदी परमत है संसारी गुर के शब्द इहो मन राता दुबदा सह सुमानी सब हुक्म हुक्म आपे निरपो समत बिचारी जो जन जान पदे पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी नामा कहे जग जी मन पाया हिरदे अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रविया राव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ बावन बिखू बाने बिखे पालते सुख लागला।

जो मान्यो देहे सो तो तेरो होए गए खेहे, क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख नलाज रे, आराम भगत ही आन चाड़ दे तै मन को मान, नानक जन ए बखान।

पूर्ण पुरख भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है,

सत्संग कल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीनस जो प्राणी।

दुर्लभं तरंग रूपं नच दुर्लभं दुर्गराजन नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वश अंबर नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बनता विलास है नच दुर्लभं विद्या प्रवीण नच दुर्लभं चतुर चंचल दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं जात कत है तत दृष्टं।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है उपदेश।

पूर्ण है। निरास आस करण सगल अर्थ आले है। गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है। दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सूखण है।

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है।

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ भागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियाल खर है विखम स्थान मन मोह मदरं मां असाध पंच तस्कर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध घोरं अगम तीर नय लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मधुर मानुखियं हृदयंग भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयं सत हदं परम बादं अवर्त इथ है शुद्ध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतं बलवंत बलाद कारण है चरण कमल नय पजंत तरण समान तिग जन्मन है।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण तहो कद पाई है हर खां सोई ज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन ना देखे साध से नैन बेहालिया करन ना सुनगी नाद करन मुंद कालिया रसना जपे ना नाम तेल तिल कर कटी है हर खां जब विसरे गोविंद राय दिनों दिन कटी है पंकज फाथे पंक महामद गुंफिया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया है कोई ऐसा मीत ये तोरे बिखम गांठ नानक एक श्री तरनाथ ये टूटे ले साठ तावो दशा अनेक प्रेम प्रभ कारणे पंच सदावे दूत तमन विद मारणे तीखण बाण चलाए नाम प्रत्याई है हरगा मां बिखा दी कात पूर्ण गुर पाई है सदगुर की नी दात मूल ना निखुटई खावो पुंचो सब गुरमुख छुटई अमृत नाम निधान दिता तुस हर नानक सदा अराद कदे ना जाहे मर जिथे जाए भगत सो थान सुहावना सगले होए सुख हर नाम तिहावना जी करन जयकार निंदक मोए पच ताजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पद पुनीत कतहे नहीं सेवी है झूठे रंग खुआर कहां लग खेवी है हर चंदौरी पेख ताहे सुख मानिया हर खां हों बलिहारी तिन जे दरगह जानिया कीने कर्म अनेक कवार विकार कान मां दुर्गंधत वास सड़का शार तन फिर तो गर्व गुवार मरण नह जानई हर खां हर चंदौरी पेख ताहे सच मानई जिसकी पूजे औध तिसे कौन राखई पैदक अन के उपाव कहां लो पखई एको चेत कुवार ताज तेरे आवई हरखा बिन नावे तन शार पिरथा सब जावई औखद नाम अपार अमोरक पीचई मिल मिल खावे संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावणे हरखा होम बलिहारी तिन जे हर अंग रावणे वैदा संदा संग इकट्ठा होया औखदिया ए रास वित्याप खलोया जो जो ओना कर्म तो कर्म होए पसरिया हर खां दुख रोग।

चरण कमल मन बेदेव पूजन सुरत संजोग सागर मेर उद्यान बान नवखण बसदा परम मूसन प्रेम परम कै कनो एक कर कर्म मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह पवर रहे लपटाए जब तब संजम हरख सोख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार द्यों सर्ब मूसन मरमना जानई मर्त हित संसार प्रेम परमना बेदेव उर्जो मेथ प्योहार काब दब जब जारी है विशरत प्रेम बेहाल मूसन तब की मूसी है विशरत पुरख दयाल जाको प्रेम स्वाओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहे लख घाटी ऊचो कनो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नयन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन भयो प्रे प्रेम स्यों पूदना सिमरत अंग प्रगट भयो सब लोम है नानक अधम पतंग।

लूट न है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कह कहो कह ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों

पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोटक मिले असंत मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

तोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए। ना हर पजयो ना खत फटयो काल पहुंचो आए महला पंजवा। कबीर कूकर पौकना करंक पिछे उठताए। करमी सतगुर पाया जिनहो लिया छिड़ाए महला पंजवा। कबीर धरती साध की।

प्रीत सुजान स्यों बरजे लोग अजान। दास टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार। कार्ज साढ़े तीन हथ तनी ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना।

जानो नहीं पालो कटक कुटंब धंधे ही मैं मर गयो बार पई ना बंब कबीर आखी केरे माटके।

सफल फलंत पीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लिलाट मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना अब घट काट कबीर एक घड़ी आदि करी

सुरापान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे सबरस खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी।

पुछई तन सुहागण नाव सोहरे पेये कंत की कंत अगम अथा हो नानक सो सुहागणी जो पावे बे परवाह नाती धोती संभही

फरीदा इट सराने पोए सवन कीड़ा लड़े ओ मास केतड़िया जुग वापरे एकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टुटी ना गरलज अजराइल फरिश्ता कहे करनाठी अज फरीदा पन्नी कड़ी सवन।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक है आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पर परे ही ते परे अपर अपार पर अपनो भावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओबद परलो एक नेमक तो कर आन नाही संसार उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भगतदार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन धारे एक ते की ए बिस्तारे पूर है ओ सर्वमय आप है निरारे हर गुण नागी अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही धारण धारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कम उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को थानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सोजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण धोते रहो सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए दूसर आनना आवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लयत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सर संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तेन सब कुल कियो उधार सच सवादी बाण सच सच्चे पै थरयो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजो संसार आप अपुल न भुल्लो रतन नाम अपार कीम न पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिए ब्रह्मादक संकाद सिख गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए ये काटी सिलक दयाल प्रभ हे जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते एत उत सदा मुक्ते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच एक सरना मेरे दान संतरेन जे लग पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देव दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलयो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में
जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काची दे मोहन बांधी सड़क ठोर कुचील कुगयानी तावत प्रमत रैन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया बद माता विचरत विकल बडो अभमानी पर थान पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हेतानी बलवंच शब कर त्यो पाव पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण समर्थ श्री धर रख लिहो नानक के स्वामी कीर्त करन सरन मन मोहन जो हुन पाप विदारन कहो हर तारन तरन समरत सबे बेद कुले समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान स संगत परम अंधेर मोहयो कद तो मूर्त करी तसा पर सिमरन राम नाम रसना संग लो होशो काज अल्प सुख बंधन कोड जन्म कहा दुख पाओ सिखिया संत नाम पज नानक राम रंग आत्म स्यों रो रंचक रेत खेद तन निर्मत दुर्लभ दे सुवार तरी खान पान शुद्ध सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप बूजन की सब सूझ परी वर्धमान हो दिन प्रतनित आप त निकट बिखम जरी रे गुण हीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए लो किरपाल किरपा निध नानक काट प्रम परी रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत खुगना सुध बंता साजन सुख बंदप ताश्यो मुह बड़ेओ सो खना बोयो बीज अंग मम अंकर बीतत औद करत अगना मृत मजार सारमुख निरखत उंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना एहन गेहन नेना नीता माया मत कहां लो गारो शतरन पतरन चौर न चावर बैती जात हृदय ना बिचारो रतन असवन गज सिंघासन शिन में त्यागत नांग सिधारो सूर्न बीरन मीर न खान संग न को दृट निहारो कोटन ओटन कोस न छोट करत विकार दू कर चारो मित्र न पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरग की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पदनाथ शरण नानक जान हे भगवंत कृपा करता रहो प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे ले ले पारी साजन सैन मी सुध पाई ताहू तेले रखी नरारी धामन पामन कूर कमान एवद करत औत तन जारी कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पश पंखी बिरख अस्थावर बहुबध जोन प्रम्यो अद पारी किन पचसा नामनि सिमरयो दीना नाथ प्राण पसारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कदकारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह मादक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तारण गगन आतफुन तावत सिद्ध मानुख देव अर दानव एक दिलता को मर मन पावत प्रे प्राप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाच है मुगदंत रसन सगल कह जावत रे मन मूड सिमर सुखदाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मुख कूप गुबार पर्यो है एता गब आकाशना मावत रिष्टा अस्त क्रिम उदर पर्यो है दैद ताए महा बिखिया कौ परतन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग रस्यो जम दूतन डन मृत मर्यो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है प्रेम भगत उदरे से नानक
कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुखवर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध माद मसर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी। इसनान दान तापन सुज किरिया चरण कमल हृदय प्रोतारी। साजन मीत सख हर बंधप जी तान प्राण आधारी। ओढ़ गई स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रह चरण कमल संग। दावन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग। पावक जरयो ना जात अरयो जन तूर लग। नीर न साक्ष बोर चले घर पंथ पाग। नानक रोग दोख आगमोह छिदे घर नाम खग। उदम कर लागे बो भाती विचरे अनक सात्र बो खटुआ। पसम लगा तीर्थ बो प्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ। बेन घर भजन सगल दो पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्कर करत सोम पाका अनक पांत हाटे कर थटुआ। सवाईये महले पहले के एक ओंकार सदगुर प्रसाद एक मान पुरख त्याए बरदाता। संत सहार सदा बिखियात ताज चरण ले हृदय बसाव। तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर। दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मसागर। जोगी जंगम ध्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक। आत्मरा जिन जान्यो तब कलश जद गावो गुरु नानक। राज जोग जिन मान्यो गावे जिन काद जुगत जोगेसर। हर्ष पूर्ण सर्व कला गावे सनकाद साध सिधाधक। मुन जन गावे अशरशला गावे गुण तोम अटल मंडल वै। भगत पाए रस जान्यो काव काल सुजस गावो गुरु नानक। राज जोग जिन मान्यो गावे कपलाद आद जोगेसर। अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परसरामेसर। कर कुठार रग तेज हरे हो उदो अक्रूर बेदर गुण गावे। सर्वात्म जिन जान्यो काव काल सुजस गावो गुरु नानक। राज जोग जिन मान्यो गावे गुण वर्ण चार खड़ दर्शन। ब्रह मादक सिमरंथ गुणा गावे गुण शेष सहजे बारस। आद अंतले लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी। जिन ध्यान निरंतर जान्यो काव कलश जस गावो गुरु नानक। अराज जोग जिन मान्यो अराज जोग मान्यो बस्यो निर्वैर हृदंतर। सिट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर। गुण गावे सनकाद आज जिन का जुग गए लग। तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग। पाताल पुरी जयकार धुन तब जन कल वखाण्यो। हर नाम रसक नानक गुर राज योग तय माण्यो। सजुग तय माण्यो छल्यो बल बावन पायो। त्रेत तय माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उगर सैन कौ राज अपहे भगते जन दियो। कल युग प्रमाण नानक गोर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो। गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माने। योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने। सुख देओ प्रीखेत गुण रवे गोतम रिख जस गायो। काव कलश जस नानक गुर नित नवतन जग शायो। गुण गावे पायाल भगत नागाद पुहंगम। महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार। ब्रह्मा गुण उचर जिन हुक्म सब सिट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो। जब कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो। गुण गावे नवनाथ तन गुर सास समायो। मां धाता गुण रवे जेन चक्र वह कहायो। गुण गावे बलराव
ਸਬਦ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਭਰਤਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰੋ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਾਬ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾੜ ਕਾੜ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਇਓ ਸਵਾਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਤਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਤਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ ਤਾਂ ਤਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਆਮਿਓ ਉਠੋ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਰ ਗਾਣ ਮੁਨ ਬੋਝ ਅਗਾਜ ਮਾਰੋ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਤਾਪਤ ਲਈਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਕਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਾਜ ਜਗਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸੰਤ ਸਾਰ ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲ ਖਣ ਉਤਾਰ ਤੇਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਗੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੇ ਸਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਪਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਸ ਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤਏ ਤੋ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਥਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਾਣ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤਰ ਜਾਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਾਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇਰੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤਏ ਤਾਂ ਹਦਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਘਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਣ ਬਿਮਨ ਬੁੱਧ ਸੁਥਾਨ ਪੈਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੋ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦ੍ਰਿਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦੈਨ ਅਗਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋ ਮੋਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਟਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਯੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੇ ਖਵੇ ਕਸ ਬਿਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਬਿੜਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾਜ ਲਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸੁਮੁਲਵੈ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪਇਓ ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗੈਰ ਗੋ ਹਦਰਥ ਦੀਓ ਗਰਲ ਨਾਲ ਤਨ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿਦ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਤਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੋ ਚਿੱਤ ਦਾਰਦ ਹਰਨ ਪੇਖਨ ਤੇ ਕਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਾ ਜੰਪੋ ਲੈਣੇ ਰਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਖ ਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੇ ਬੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਜਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਪ੍ਰਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਆੜਸੜ ਮੱਜਨ ਹੋਏ ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਖ ਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਅਮੇਦ ਸੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਦਰੀ ਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਤੋਵੈ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹੇ ਨਿਸ।

गुरदये मलायो पिखया, जिव तू रख है तिव रहो, पैर समाध सना हो, ज्ञान गए आसन चढ़यो, धराम तनक कर गयो, भगत सील है सर लड़यो, पै निरपो हर अटल मान, शब्द गुर ने जा गड्यो, काम क्रोध लोभ मोह अवत, पंच दूत बिखंड्यो, पलो पुहाल तेजो तना, निरपतनाथ नानक बार, गुर अमरदास सच सल पान, तय दल जितो इव युद्ध कर, कण हर बूंद बसो रो मावल, कुसुम बसंत गणंत न आवै, रस करण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के।

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपाय अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी। तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे पुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सभी ऊपर करी कृपा सहयुग जन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा थाप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी सिर थप्यो हर का नाम अखय निध अप्यो अप्यो हर नाम अखय निध चो जुग गुर सेवा कर फल लइयं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूपोखण परण सतगुर गुरसेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुर बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलखा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही ए आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की वृथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कहे एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल महे रया पूर बोविद वर्णं सद गुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जाग रचा कुंडलनी सुरजी स संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सभी ऊपर मन भज क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतन रूप मोह महा मग पई किंकनी

तदकार मन गए अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रसदा सलामत, कहे न सके को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत, तिनको मोह भया मन मत का, 84 लख जोन उपाई, रिजक दिया सबहु कहो तद का, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे।

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुद को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कलजुग दुर्त दूर करबे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जोग कवक को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगस। देखत दर्स पटक परम भजत सुख परहर सुख सहज बेगस। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबास। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरत। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिधर सिद्ध न छोड़े सत। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नी अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फेरे। अविनाशी अचल अजो नी संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुरु नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में।

का तान फिटक फिटका कोड़ बदियां सदा सदा अभमान पाए एते जाहे वीसर नानका एक नाम सा बुद्धि जाली है एक रह तत ज्ञान माथे जो तुर लिखया सो मेट न सके कोए नानक जो लिखया सो वर्तदा सो बुझे जिसनू नजर होए जिन्नी नाम सारिया कूड़े लालच लग तंदा माया मोहनी अंतर तसना अग जिन्ना वेल ना तुंबड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई है ना मिली वग साग आप उलाए पुलिये आपे मेल मिलाए नानक गुरमुख छुटी है जे चले सतगुर पाए साला की सालाना ही सच्चा साला है नानक सच्चा एक दर बीबा पर हर आग नानक जय जय मैं फिरो तह ते सच्चा सोए जय देखा ते एक है गुरमुख प्रगट होए दुख विसारण शब्द है जे मन मसाए कोए गुर कृपा ते मन वसे कर्म प्राप्त होए नानक हो करते खप मोए खून लखे संख सतगुर मिले सो उबरे साचे शब्द अलंक जिन्ना सतगुर एक मन सेवया तीन जन लागो पाए गुर शब्दी हर मन वसे माया की भुख जाए सेजन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए नानक होर पतसाइया कूड़िया नाम रते पातशाह जो पुरखे घर भगती नार है अतलोचे भगती पाए और सालने सवार दी खटस मीठे पाए त्यो बाणी भगत सलाह दे हर नामे चित लाए मन तन तन आगे रखया सिर वेचया गुर आगे जाए पै भगती भगत बलोच दे प्रलोचा पूर मिलाए हर प्रावे प्रभाव है किर खादे तिवताए सतगुर के भाणे जो चले तिवता से हर गुण गाए तन तन कल जुग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवयो शब्द ना रखियो उर तार तिग तिना का जीवया कित आए संसार गुरमती पौ मन पवे ता हरस लगे प्यार नाव मिले तुर लिखया जन नानक पार उतार माया मोह जग परमिया कर मुसे खबर न होए काम क्रोध में घिर लया मन मुख अंधा लोए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागे सोए नाम रतन प्रगासया मन तन निर्मल हो।

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है संत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चितराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सदगुरु जम काल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई जो मन जानदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई उत कलत मोहित गए अंत बेली को ना सखाई सदगुर सेवे सो सुख पाए नव से मन आई नांग से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए होमे अंतर मैल गए शब्द न काढे धोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन ना करे विश्वास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास हर ज्ञानिया की रखदा हूं सब बलिगारी तास गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास माया पुयंगम सर्प है या केरिया बिखवाए देखा मारण हर नाम गए गुर गारड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलया आए मिले सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे सोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सतगुर पाए सतगुर पुरख निर्वैर है नित हिरदे घर लिव लाए निर्वैरे नाल वैर रचाएद अपने कर लू की लाए अंतर क्रोध अंकार है अन दिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौक दे बिख खादे दूजे पाए बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए बेसवा केरे पूत ज्यो पिता नाम तुझ जाए हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तस बलिहारण जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नावे जम पुर जावे नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतावे चिंता ताप तरह गए तामन पया आनंद गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद सतगुर सेवन अपना गुर सबदी विचार सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार ऐथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह समाओ वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ जन नानक मंगे तूड़ तेन तो सद कुरबाने जाओ लग चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार यो मोह माया सब पसरिया नाल चले न अंती वार बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार।
ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਸ ਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਗੁਰ ਧਾਰ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਨ ਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਹਰ ਜੀਓ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਗਰਪੜਾ ਮੇਲਿਆ, ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ, ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਏ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਿਚਲ ਭਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ, ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੋ ਮਾਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਤਿਉ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਤਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ, ਮਨਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿੱਜੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ, ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ, ਉੱਚੀ ਹੂਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੈ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ, ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬਿਗਦ ਉੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ, ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਅਧ

हथ न पाए मन मुख से ती संग करे मोह कालख दाग लगाए मोह काले तिन लोभिया जसन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उतरै जन नानक हर गुण गाए तुर हर प्रभ करतै लिखिया सो मिटना ना जाए जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राय चुगल निंदक भुखे रुल मोए।

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुपहाय ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सतगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़े लुजै गुरमुख होए तेस सब के सुजै नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिन्ना सतगुर पुरख।

बंगली पौन असले की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दे साख सुनाव है बंगालम माद माद वगाव है ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थप है गोंड करी अरदेव गंधारी

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साद बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तिर रहे समाए

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तै डूबी अले, मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्रापत मान खुदे हुरिया, गोविंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति

वासा अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मेर साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुनवड्डा है कर डंडौत पुनवड्डा है रहाओ साक तहारा साधना जानिया तने अंतरा हम मैं कंडा है ज्यो ज्यो चल है चुबै दुख पावै जम काल सह है सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है जन नारक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाड़ चलो हरलाहा आगे बसन सोहेला औद घटे दिन सुरहनारे मन गुरमल का सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउं कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुरमिल पौजल लंगी है दरगह पत परवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पात है खोट ना सी जस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाह, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यों टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जां जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके पया पुराना चोला, रहाओ सज्जन मेरे रंगले।

जेबो तेरा पड़िया होवै को रह न परिया पाई सोई काजी जन आप तजिया एक नाम की आया दारो है पी होसी जाय ना जासी सच्चा सृजनहारो पांच वक्त निवाज गुजारै पढ़ै कतेब कुराना नानक आखै गुर सदेई रहो पीना खाना। श्री राग महला पहला कर चौथा एक सवान दो सवानी नाल पलके पौके सदा बयाल कूड़ शुरा मुठा मुरदार तान रूप रहा करतार मैं पत की पंदना करनी की कार हाँ बिगड़े रूप रहा बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार रहाओ मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नी सनात काम क्रोतन वसै चंडाल तानक रूप रहा करतार फाही सुरत मलुकी वेस हाँ ठगवाड़ा ठगी देस खरा स्याणा।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जा दुख लागे ता तुझे संभाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं।

भाई को नाम लै फिर आवे जाए। सब मैं एक वर्तदा एक और समाए, जिसनो आप दयाल होए सो गुरमुख नाम समाए। पढ़ पढ़ पंडित ज्योत की वाद करे विचार, मत बुद्ध भवी न बुझई अंतर लोभ विकार। लख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम होए खुआर, पूर्व लिखिया कमावना कोई न मेटन हार। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए, शब्द मिले ता हर मिले सेवा पवै सब थाए। पारस परसै पारस होए ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन भुखा भुखा मत करै, मत तू करै पुकार। लख चौरासी जिन श्री

से विष्टा महे समाए, तिनका जन्म सफल है जो चलै सतगुरु पाए। कुल उधारै अपना धन जने दी माए, हर हर नाम ते आई है जिसनों कृपा करे रजाए। जिनी गुरमुख नाम ते आया विचों आप गवाए, ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए। नानक आए से प्रवान है जिन गुरमति हर ते आए, श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुर पूछ करै व्यापार। हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट भंडार। भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करै, गुरमुख नाम ते आए रहाओ। हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना हो वही दुबदा बोल खुवार। सो जन रलाया ना रलै जिस अंतर बबेक विचार, सो सेवक हर आखिया जो हर राखै उर तार। मंतन सो पे आगे धरे हमें विचों मार, तन गुरमुख सो प्रवान।

लख चौरासी तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए। नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदर नाम त्याई है सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। भाई रे जग दुखिया दूजे पाए गुरसरनाई सुखल है अंदर नाम त्याए। रहाओ साचे महल न लग गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिया हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञाना दे राजाए। मनमुख मैले मल भरे होमै तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल न उतरे मर जमै होए खुआर। धातर बाजी पलच रहे ना उर वार ना पार। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा मनमुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी न होए। शब्द ना चीने सदा दुख हर दर गै पत खोए। होमै गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मानो अहनिस पूर रही नित्यासा सतगुर से मोह पर जलै करी माए उदासा। रहाओ गुरमुख कर्म कमावै बिकसै हर बैरा गया नंद। अहनिस भगत करे दिन राती होमै मार निचंद। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर पाया सहजानंद। सो साधु बैरागी सोई हृदय नाम वसाए। अंतर लागना ताम समूले विचों आप गवाए। नाम निधान सतगुरु दिखा लिया हर रस पिया आगाए। जिन किने पाया साध संगति पूरे भाग बैराग। मनमुख फिरे न जाने सतगुरु हो मैं अंदर लाग। नानक शब्द रते

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणी जा आपे नजर करे, सेजन शब्दे सोहने ते सच्चा दरबार, गुरमुख सच्चा शब्द रते आप मेले करतार। गुरमती सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार, घड़ घड़ आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार। गुर शब्दी सलाही है हमें विचों खोए, सात अन्ना मैं बाहरी अवगणवंती रोए। सच सलाही सच लगा सचे नाए तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए। आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए, नानक गुर सलाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए, अपना पिरना पछाणे क्या मोह दिसै जाए, जिनी सखी कंत पछाणिया।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए। श्री राग महला पंजवां। कड़ी मुहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जा होवा हुक्म किरसान दा ता लुण मिणिया खेतार पहला पहर धंधा गया दूजे पर सोया तीजे चाख चखाया चौथे पोर पया कदी चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिस ते सोझी मन पई।

जिन मन वस्या पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्द सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, पूरा सतगुर जे मिले।

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार। बालक बिरद ना जानिया निचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए नेदारा आधार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवे सांत एक मन एक ते आईए मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिए।

वन्य पूरव राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोय ना रखण हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया। श्री

हऊ मैं रोग भ्रम कटिया ना आवे ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिले वडियाईया दरगह पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किच सही हाथ, मारा पे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल, सतगुर कै उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निम

सतगुरु की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कुकर हर काया तावै दै दिस जाए। लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए। जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार। जिसनो रखे सो रह समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महल

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनो वाए सुनाईए सो केवड कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लहो अगमे अपार पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवदगार रहाओ तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावे रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखे सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछना साजे।

अंबड़ कोई न सकई हों किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया जय पावे तैं दे।

गणत गणावने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ प्ररावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन है नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ सबदरती मन वेदया हो सतबलिहार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पिरी सालू नौ तनो साचो मरै ना जाए नित रवै।

चंदन चीत वसाया, मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी, मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी, साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानी, साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए, क्यों पिर बिन रहन विहाए, अंक जलो तन जालियो, मन तन जल बल जाए, जा तन कंत ना राविया, ता बिरथा जो बन जाए, सेजै कंत महलड़ी, सूती बूजना पाए, हों सूती पिर जागना, किसको पूछो जाए, सतगुर मेली भै वसी, नानक प्रेम सिखाए, श्री राग महला पहला, आपे गुणे आपे कथै, आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू, आपे मोल अपार, साचा मान महत तू, आपे देवन हार, हर जियो तू करता करतार, ज्यों पावे त्यों राख तू, हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीठ, आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना, घट घट डीठिया डीठ, आपे सागर बोए था, आपे पार अपार, साची वाट सुजान तू, शब्द लंगावन हार, निडरिया डर जानिए, वाजगुरु गोबार, आसर करता देखिए, हुर केती आवे जाए, आपे निर्मल एक तू, हुर बंदी तंदे पाए, गुर राखे से उबरे, साचे सुन लिवलाए, हर जियो शब्द पछाणिए, साच रते गुरवाक, ते तन मैल न लग गई, सच कर जस्यो ताक, नदर करे सच पाईए, बिना मैं क्या साक, जिन्नी सच पछाणिया, से सुखिए जुगचार, हों मैं तृष्णा मारकै,

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिस होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ वेणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार वेण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहै घर अपने चलै कारज सार वण जा रिया स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दाकर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिया निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मनमस

आर संत सवा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाण रव रहे ना तिसकाल संताए साहेबा तोल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वापारी वन जा रिया आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै रजाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस दिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी साचित राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तोलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाईऐ बिनहर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिलै पाईऐ रतन विचार मन दीजै गुर अपने पाईऐ सर प्यार मुक्त पदार्थ पाईऐ अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोय रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए सफलो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए लाल

सुखदाता दुख मेटनो, सतगुर असर संगार, भाव जल बिखम डरावनो, ना कंधी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा, ना तिसवंज मलार। सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार, एक तिल प्यारा विसरै, दुख लागे सुख जाए, जिहवा जलो जलावनी, नाम ना जपै रसाए, घट बिनसै दुख अगलो, जम पगड़ै पहताए, मेरी मेरी कर गए, तन तन कलत ना साथ, बिरना मैं तन बाद है, भूलो मार गयाथ, साचो साहेब सेविए, गुरमुख कथो काथ, आवै जाए पवाईए, पया किरत कमाए, पूर्व लिखिया क्यों मेटिए, लिखिया लिख रजाए, बिन हर नाम ना छुटिए, गुरमत मिलाए मिलाए, तिस बिन मेरा को नहीं, जिसका जियो प्राण, हम मैं ममता जल बलो, लोभ जलो अभमान, नानक शब्द विचारिए, पाइए गुणी निदान। श्री राग महला पहला, रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़िए, पी विकसे असनेह, जल मैं जी उपाय कै, बिन जल मरण तनेह, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहया, बक्से भगत भंडार रहाओ। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यों अदको त्यों सुख कणो, मंतन सांस शरीर, बिन जल कड़ी न जीवई, प्रभ जान अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी चात्रक में है, सार पर थल हरियावले, एक बूंद न पवी के, कर्म मिले सो पाई है, किरत पया सिर देहे। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी जल दोए, आवटन आपे खवे, दुध को खपन ना दे, आपे मेल विशुनिया, सच वड़ियाई दे। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी चकवी सूर, खिन पल नींद ना सोवई, जाने दूर हजूर, मरमुख सो जी ना पवै, गुरमुख सदा हजूर, मनमुख गणत गणावनी, करता करे सो होए, तां की कीमत ना पवै, जे लोचै सब कोए, गुरमत होए ता पाई है, सच मिले सुख होए, सच्चा निहो ना टुटई, जे सतगुर पेटै सोए, ज्ञान पदार्थ पाई है, तिरपमन सो जी होए, निर्मल नाम ना विसरै, जे गुण का गहक होए, खेल गए से पंखनू, जो चुग दे सर तल, कड़ी के मुहत के चलना, खेलन अज के कल, जिस तू मिले सो मिले, जाए सचा पिड़मल, बिन गुर प्रीत न उपजाए, हो मैं मैल ना जाए, सोहंग आप पिछाणिए, शब्द भेद पति आए, गुरमुखे आप पिछाणिए, अवर के करे कराए, मिलिया का क्या मेली है, शब्द मिले पति आए, मनमुख सो जी ना पवै, विछड़ चोटा खाए, नानक दर कर एक है, अवर ना दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मनमुख भुले भुलाई है, भूली ठौर ना काए, गुरबिन को ना दिखावई, अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोया, ठग्या मुठा जाए, बाबा माया परम पुलाए, परम पुली डोहागनी, ना पर्यंक समाए रहाओ, भूली फिर

महले पहले सतारह अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिरके अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वही बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है, हो मैं जात गवाई। सुर नर तिन की बाणी गावे, कोई न मेट भाई। दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े, दूजा पाओ न जाने। सतगुर भेटे है निर्मल होवा, अंदन नाम वखाणे। एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर न जाने। खड़ दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम भुलाए। सतगुर सेवै ता गत मित पावे, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी से उचित लागे, आवन जान रहाए। पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे, बिन गुर परम भुलाए। लख चौरासी फेर पया, बिन शब्द मुक्त ना पाए। जा नाव चेतै तां गत पाए, जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजै, जा सतगुर मिले सुभाए। मन तन अर्पी आप गवाई, चला सतगुर पाए। सतबलिहारी गुर अपने विटाओ, जे हर से तीच तलाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर से तीरंग राता। प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता। नानक नाम मिलै वडियाई, गुर कै शब्द पछाता।

अंदर गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पिछाणी एको सेवन एक आराध्य गुरमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेविए गुरमुख वसै मन आए सदा रंग राते सच सिउ अपनी कृपा करे मिलाए आपे करे कराए आपे इकना सुत्या दे जगाए आपे मिल मिलाएंदा नानक शब्द समाए श्री राग महला तीजा सतगुर सेविया मन निर्मला पय पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना सच नाम मन धीर मन रे सतगुर सेव निसंग सतगुर सेविया हर मन वसै लगे ना मैल पतंग रहाओ सच्चे शब्द पद उपजै सच्चे सच्चा नाओ जिन्नी हो मैं मार पछाणिया हाउ तिन बलहारै जाओ मन मुख सच ना जाननी तिन ठौर ना कथू थाओ सच खाना सच पहनना सच्चे ही विचवास सदा सच्चा सलाहना सच्चे शब्द निवास सब आत्म राम पछाणिया गुरमति निज करवास सच वेखणु सच बोलना तन मन सच्चा होए सच्ची साखी उपदेश सच सच्चे सच्ची सोए जिनी सच विसारिया से दुखिए चले रोए सतगुर जिनी ना सेवियो से कित आए संसार जमदर बदे मारिए कूक ना सुने पुकार बिरथा जन्म गवाया मर जमै वारो वार एहो जग जलता देख कै भज पाए सतगुर सरना सतगुर सच दरडाया सदा सच संजम रहना सतगुर सच्चा है बोए था सबदे पव जल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत होई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन नानक भगत सुखिए सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवां।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में, खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाहे लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमे प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देवे दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया तू भोग।

मात पिता सुत ने हुकनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटै गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जन्म मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किश अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमन मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावे सहज समावे सगले दुख मिटावे कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावे श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावे हर उचरै बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तु ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख बीचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए वन जा रहा मित्रा ले

सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते विखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा।

संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौण ना माया होया कर गै लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो न तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ न जाय अकथ स्वामी सदकै जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोई जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोए जो मोहे माया चितलाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिने अवर ना कोए हर गुर शरण आई पाई है मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना मन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हों मैं कर्म कमावंदे ज्यों वेसवा पुत ननाओ पिता जाता होई है गुर तुठा करे पसाओ वड भागी गुर पाया हर अहनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ।

आए तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे देवै ले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के ही के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहरास। रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतने मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखम तार। सलोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल इक जागंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनो जो ले छड़ाई। सलोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आपो जे को पला कहाए। नानक ता पर जापै जां पत लेखै पाए। महला दूजा जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यो तिन पिछे सब जगत छुटीवे। सलोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझे ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब कै रंग रह, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक साहेब प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच।